0: ये है लाइका रेडियो। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood classics every weekday.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

तेरे भगत रसाले। थोर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: This is Leica Radio.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 9.10 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE54UN.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises.
5: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: Yeah, hello!
8: Leicester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Leica Radio.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. Tab khas tumhe jaan.
4: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Cool music for a super hot summertime on the Lyca Radio Network.

0: podcast Leica Extra podcast.
1: Leica Extra is here.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
3: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज, योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके, यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस। फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट, कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलीडे।
4: काजल का मॉर्निंग मंत्रा

0: Baker Radio.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Function rakha hua hai.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
7: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
6: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक

0: आइए प्यार बांटे प्यार लूटे, किताबें इश्क में मिलकर सुनहरी हरफों से आओगे एक और मोहब्बत भरा अफसाना लिखेंगे, और खुद को लिखूं मैं शराबी तमाम पन्नों पर, और तेरी आंखों को छलकता हुआ पैमाना लिखेंगे। हो गया, शायरी हो गई, डायरी हो गई, अब बंद करो पन्ने और बताओ पाउंड का क्या रेट चल रहा है आज।
1: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, भाई आज भी रेट अच्छा मिल रहा है। अगर अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.35 रुपीस मैक्सिमम, अधिकतम 127.35 का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
8: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर, सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: London, get ready for an unforgettable night.
12: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
11: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
12: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
11: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
12: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
11: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
13: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
14: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
13: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
15: From Solihull to Erdington, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
16: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
15: This is Leica Radio, part of the Leica Radio.
17: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
15: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
19: दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ.

क्या इशारे हो गए भाई, मुस्कुरा कर देखने से पहले थोड़ा सोच लेना, कोई भी गले पड़ सकता है ऐसे यहाँ। हम तुम्हारे हो गए पक्का, गारंटीड। क्यों देखा मुस्कुरा के, गुस्से में देखो।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। और बहनों भाइयों, धीरे धीरे समय हुआ जाता है समाचारों की ओर बढ़ने का। वेल, प्रिंस विलियम विल रिप्रेजेंट हिज फादर किंग चार्ल्स एट द फ्यूनरल ऑफ किंग हेराल्ड पंचम ऑफ नॉर्वे। बकिंगम पैलेस से ये सूचना आई है कि भाई राजकुमार विलियम जो है वो अपने मतलब राज्य का कहिए या राजा का प्रतिनिधित्व करेंगे नॉर्वे में, वहां के सम्राट की मृत्यु पर जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे, अफसोस करेंगे जाके। इसके अलावा भाई और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन मैं ज्यादातर खबरें आप जानते हैं सब कॉन्टिनेंट की कवर करता हूं। समय हो गया है, आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के प्रमुख समाचारों में।
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
4: लाइक अ रेडियो।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। नेपाल की बाढ़ में मरने वालों की तादाद 1355 हो गई है, 1355। अमेरिका के मायामी कार्गो विमान रनवे से बाहर निकला, 5 लोगों की मौत हो गई है वहां। भारत में आदित्य ठाकरे ने गरबा और डांडिया में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर के एक बयान दिया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 1.5 लाख से भी ज्यादा मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस कर रह गए हैं। विस्तार से समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन हादसे में दिल्ली नगर निगम साउथ जोन के 5 अफसरों को तुरंत फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन के जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम है राकेश कुमार डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन, रणवीर सिंह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साउथ जोन, ललित कुमार गोयल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साउथ जोन।

0: 355 हो गई है। आज 13वें दिन का ये आंकड़ा है। नेपाल में बाढ़ में मारे गए लोगों की याद में आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में बाढ़ के 13वें दिन राष्ट्रीय शोक मनाने का ये फैसला लिया गया था। शोक की अवधि के दौरान पूरे नेपाल में सरकारी दफ्तरों और विदेशों में जो नेपाल के डिप्लोमेटिक मिशन्स हैं वहां पर उनका नेशनल ध्वज यानी झंडा आधा झुका रहेगा। दुनिया के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भारत के ऐतराज पर पाकिस्तान का जवाब आया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से दुनिया के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति जताई गई है उस पर भारत ने ऐतराज किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत के बेबुनियाद दावों को पूरी तरह खारिज करता है। आपको बता दें, भारत के इलाके को गलत या भ्रामक तरीके से दिखाना, भारत का कहना है कि हमें मंजूर नहीं है। भारत की सीमाएं अटल हैं और इससे समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी में राइट विंग अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी ईस्टर्न स्टेट्स में सैक्सोनी ऑन हॉल्ट में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। ये पार्टी मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों से काफी आगे है। हालांकि अनुमान है कि इन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का कहना है कि उसे सरकार बनाने का जनादेश यानी मेजोरिटी मिल चुकी है। अब तक आए ज्यादातर शुरुआती नतीजों में वो कंजर्वेटिव CDU से काफी आगे है। भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक बिल्डिंग के गिरने का हादसा हुआ, दिल्ली सरकार अब लाएगी वहां बिल्डिंग रूल, CM रेखा गुप्ता ने बताया है। सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नए कानून लाने की बात कह रही हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट रूल बनाने की तैयारी कर रही है। आदित्य ठाकरे ने गरबा और डांडिया में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर के एक बयान दिया है। ऐसी चर्चा थी कि वहां वो धार्मिक कार्यक्रम है और उसमें मुस्लिम नौजवानों का आना वहां ऑर्गेनाइजर्स को शंका से भरा दिखाई पड़ता है, शक करते हैं वो। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन होते हैं, उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, यानी उनका उनके लिए गरबा जो है वो ओपन रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में चाहे गरबा हो, नवरात्रि हो, दही हांडी हो या गणपति उत्सव, यहाँ आपको दिखने वाले सभी लोगों की पहली पहचान मुंबई कर की है। वो चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी राज्य से आए हो, उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, वे बप्पा के लिए आते हैं, किसी खास व्यक्ति के नहीं, और बप्पा सबके हैं। आदित्य ठाकरे का बयान। इंडोनेशिया से खबर आ रही है वहां ज्वालामुखी के फटने से वहां 8 हवाई अड्डों पर करीब 170,000 मुसाफिर फंसे हुए हैं। इन हवाई अड्डों से फिलहाल फ्लाइट्स को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया है। कल संडे की सुबह जकार्ता के सोयकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले बंद किया गया था। अमेरिका से खबर आई है वहां के मायामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल संडे को एक कार्गो हवाई जहाज रनवे से बाहर निकल करके हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य जख्मी भी हुए हैं। अमेजन एयर का यह कार्गो हवाई जहाज लोकल वक्त के मुताबिक करीब 2 बजे उतरने के बाद रनवे से आगे निकल गया और क्रैश हो गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और अब हो जाइए तैयार, आ रहा है गीत का उपहार उन लोगों के लिए जो आज अपना भाई जन्मदिन मना रहे हों, ना भी मना रहे हो तो आज मना लीजिए, क्योंकि गीत आ गया है तो अब मनाना ही पड़ेगा ना। हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे और आपको स्वीकार करना होगा। अमित कुमार और साथियों की आवाज।

0: अमित कुमार और साथियों की आवाजें, और वही ये गीत था फिल्म घर का चिराग से, घर का चिराग, आई लव यू टू।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: जी हाँ, Southall Travel का संदेश। Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो,
4: वन परफॉर्मर।
5: इन्हीं के सामने पर्सन से कहते, क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ी हो खिलाड़ी।
6: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
7: जिंदगी बर्बाद हो गया।
8: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट।
9: नंदन फंक्शन रखा हुआ है।
10: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026,
11: 29th अक्टूबर ओवर अरेना वेम्बली लंदन, 31st अक्टूबर मैटियोली अरेना लेस्टर।
12: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी, फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस, एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर लाइव ऑन स्टेज इन द यूके।
13: प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिन एक्स ग्लोबल एंड टिम्स मीडिया प्रोडक्शंस,
12: सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग अवेयरनेस। Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
13: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
14: The wait is finally over.
15: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
14: Mirzapur is coming to the big screen.
16: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
14: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
17: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
14: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit, aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
18: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji, dusra koi nahi khulega.

0: भर
1: जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। भाई ये गीत हमें ले आया है खबरों के नजदीक और खबरों में अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक कार्गो हवाई जहाज रनवे से बाहर निकलकर दुर्घटना का शिकार हो गया। 5 लोगों की मौत हुई और 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और यहाँ चांसलर जो अपनी मेजर स्पीच तैयार कर रहे हैं भाई, सबकी निगाहें लगी हैं क्या होगा उनके भाषण में, लेट्स फाइंड आउट।
2: Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire.
3: This is Leica Radio.
2: Midlands.
4: Top stories this hour. The Chancellor is making his first major speech in the role, saying the government has a determination for growth and a belief in Britain's future. Speaking in Coventry, John Healey's been revealing details of a £150 million fund for firms in the north of England. He started by recalling his participation at the G20 meeting in the US last week and heaping praise on his predecessor.
5: I was proud to have behind me the work begun by Keir Starmer to re-establish Britain as a respected voice among our allies, and the work begun by Rachel Reeves to recover Britain's fiscal discipline. I will build on both as Chancellor.
4: Meanwhile, Jaguar Land Rover's confirmed plans to cut 4,000 jobs over the next 2 years. Britain's largest car maker is looking to save £1.7 billion in costs. The United Union says it will leave no stone unturned to support workers. A senior government minister has condemned the behaviour of protesters last night at anti-migration demonstrations in Portsmouth. Hundreds gathered in a standoff with police blocking roads around Eastney Marina. 5 people are dead and 5 others were seriously injured after an Amazon cargo plane overshot the runway while attempting to land in Miami. The company says it's working to understand how it happened. 2 US envoys say they've had encouraging talks in Kyiv. Steve Witkoff and Jared Kushner went there after meeting Vladimir Putin in Moscow on Saturday. With aerial attacks escalating, they travelled between the capitals by train. Mr. Kushner insists they're looking for more than just a stopgap deal.
6: Not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing bravery, ingenuity, strength that it's used to get through the last years of war.
4: And it's claimed laughter therapy could help people with a common lung condition breathe better. A trial in Turkey suggests it could be as effective as breathing exercises. From Sky News, I'm Faye Rowland.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: वेरी गुड मॉर्निंग। आज के मौसम के विषय में बता दें भाई, दोपहर बाद के मौसम में सनशाइन तो डेवलपिंग है ही, लेकिन कुछ देर के बाद कहते हैं बादलों के भी घिराने की पूरी आशंका बनी हुई है। और शाम को जो है आसमान फिर साफ होगा और गर्म दिन रहेगा पिछले दिनों के मुकाबले। टुनाइट इट विल बी क्लाउडी एंड वेट विद आउटब्रेक्स ऑफ रेन। तो साहब अधिकतम तापमान यानी मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 24 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।
2: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410।
7: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: और बहन भाइयों, हम आ गए उस मोड़ पर जहां आप चिंतन सुनते हैं। और उसके प्रसारण से पहले एक सूचना आपको हम पहुंचाना चाहते हैं। और सूचना यह है कि विश्व में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में सादर आमंत्रित करते हैं। आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के लिए ये विशेष अवसर पर परिवार और मित्रों के साथ जुड़िए। नोट कर लीजिए, रविवार 13 सितंबर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये यज्ञ होगा। आर्य समाज लंदन 69 आर्गाइल रोड लंदन में, पोस्ट कोड है W13 0LY और बुकिंग के लिए संपर्क नंबर है 02089911732। तो भाई ये सूचना थी और आइए सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें वेस्ट लंदन से राजीव शर्मा ने भिजवाया है। और एक बात पर भाई वो विचार करने का आग्रह करते हैं कि सोचिए जरा, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं या दो पशु भी लड़ते हैं तो आसपास की खेती को कितना नुकसान होता है, दो देश लड़ते हैं तो तबाही कहां कहां तक प्रभावित करती है, अकाल, भूखमरी, अत्याचार और मृत्यु किसी भी युद्ध का एक नतीजा है। जंग का नतीजा क्या होता है, इसमें हार जीत नहीं होती, दोनों ही हारते हैं लड़ने वाले और जीतते हैं। तो भाई अनुभव से बता रहा हूं कि जीतता है तो जब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मुकदमे में पड़ जाएं तो जीत वकीलों की होती है, यकीन मानिए। देश जब जंग शुरू करते हैं तो हथियार बेचने वालों की जीत होती है, नुकसान तो उन दोनों का होता है। अब राजीव कहते हैं कि ये फैसले जो है ना जंग के, ये पॉलिटिशियंस लेते हैं, लेकिन नतीजा कौन भुगतता है, एक आम आदमी। जब कोई भी युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सालों तक उस देश पर और उस देश के नागरिकों पर मंडराता रहता है। अब इन्होंने कुछ खोज की है और पता चला कि दुनिया में इस समय कितनी जंगें चल रही हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं। जवाब मिलेगा 65, छोटी बड़ी जंगें, ये गूगल भाई साहब ने बताया है। वो कहते हैं उनसे पूछिए कि इन युद्धों में, इन लड़ाइयों में लगभग कितने लोग सालाना अपनी जान गंवा रहे हैं। जवाब मिलेगा 1-2 लाख के बीच। और मजे की बात के जान गंवाने वाले सारे निर्दोष होते हैं, डायरेक्टली उनका कोई इरादा नहीं होता लड़ने का, या यूं कहिए कि उनका कोई हित नहीं होता है लड़ने में। इतिहास गवाह है कि कई नामचीन लोगों ने नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए बलिदान दिए। सब बात शांति की करते हैं, शांति की, प्रगति की बात करते हैं, लेकिन युद्धों की शुरुआत करते हैं यही लोग। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि दुनिया से जंगें खत्म हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच राजीव जी। कहते ये प्रार्थना हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने भी सिखाई है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा पला। जब सबका भला चाहेंगे तो किससे लड़ाई करेंगे आप। और भाई शांति सिर्फ देशों के बीच ही नहीं, जल में, स्थल में, आकाश में, वनस्पतियों में, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति रोषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति शांति सर्वम, शांति शांति रेव शांति सामा, शांति रेधिये। कण कण में शांति हो, हम जो फसलें उगाएं उनमें शांति का संचार हो, जल में शांति हो, वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में यानी स्पेस में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, हमारी औषधियों में, वनस्पतियों में, कण कण में, जन जन में शांति हो, ये प्रार्थना करें। विचार करें तो बहन भाइयों, इलाज यही है, जंगों से विनाश होता है, शांति से विकास होता है। चिंतन, चिंतन। देशों के बीच ही नहीं, लोगों के बीच भी, पड़ोसियों के बीच, परिवार में, कारोबार में शांति की स्थापना हो, ये प्रार्थना है।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें राजीव शर्मा ने भिजवाया था ईलिंग से, ईलिंग वेस्ट लंदन से, और जो गीत हमने आपको सुनवाया मोहम्मद रफी साहब और साथियों की आवाज में, फिल्म देश प्रेमी से लिया गया था। और इसी बीच भाई चिंतन के बहुत सारे प्रशंसा के शब्द जो है चिंतन के लिए आ रहे हैं। वत्सला कह रही है, अच्छा लगा चिंतन, प्लीज आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है तो एक भजन सुनवाइएगा भाई। हाँ, कई लोगों के लिए आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए भाद्रपद चल रहा है और कृष्ण पक्ष की आज एकादशी यानी अजा एकादशी है। ये गुजरात और पंजाब, उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में थोड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में भी अभी श्रावण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार जन्माष्टमी का जो होता है वो रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय अष्टमी को हुआ था, तो उस हिसाब से ये भाद्रपद चल रहा है। पर जो भी समय है, प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। आपने जिस गीत की मांग की है मैं कार्यक्रम में आगे चलकर शामिल करूंगा। वत्सला जी, हमारी नीला चौधरी जी कहती है वेलकम रवि भैया, और चिंतन सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप ही के लिए होता है ये चिंतन प्रेमी है। कल इतने लोगों से मुलाकात हुई एक कार्यक्रम के दौरान, हर किसी ने चिंतन का जिक्र किया और कहते हम प्रतीक्षा करते हैं चिंतन की। थैंक यू जी। विजय सटन से और पम्मी सिंह स्लाव से, अर्जन जी कहते हेलो रवि शर्मा, चिंतन वाज वेरी बेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। और भाई चिंतन के प्रेमी है सीजर फर्नांडिस, प्रदीप सोलंकी, रंजन, हरविंदर, जैस्मीन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत से हमारे सैनी साहब, और आपका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है भाई, नाम जरूर लिखा करें, अब नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ता है। अरे हितेश भाई है, हितेश भाई नीचे नाम लिख दिया करो आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं गुजरात में। जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो साहब चिंतन से निकलते हैं और जुड़ते हैं अपने मूल रंग किसे यानी मनोरंजन के मनोरंजक रूप से। आज का चिंतन, आज का विचार समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
0: एक बार फिर याद दिला दें भाई, जो सूचना हमें मिली है, हमारी एक बहन लिखती है कि ये जो विश्व शांति की आपने बात की, हम भी जुड़ना चाहते हैं उन प्रार्थनाओं में। तो भाई बता दूं आपको कि विश्व में शांति के लिए, युद्धों की बंदी के लिए, सद्भाव के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित कर रहे हैं वैदिक प्रार्थनाओं के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति अंतरिक्ष, शांति आप भाई पानी में, जल में, वायु में, आकाश में शांति स्थापित हो, प्रार्थनाएं होंगी। तो ये हो रही हैं 13 सितंबर रविवार को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक, आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY। और बुकिंग के लिए उनका संपर्क नंबर है 02089911732। चिंतन समाप्त होता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. क्या रेट चल रहा है आज? एक पाउंड के बदले कितने पैसे दे रहे हैं SBI वाले? SBI UK कहते हैं कि 127.35 इंडियन रुपीस फॉर 1 pound वी आर गिविंग। अच्छा रेट है, भिजवाइए। और भिजवाने का तरीका, किसी भी ब्रांच में चले जाइए, यस एनी ब्रांच, SBI की किसी ब्रांच में, या फिर ऑनलाइन, या फिर वो जो उनका योनो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू से भी, योनो SBI UK के मोबाइल ऐप के थ्रू आप पैसे भिजवा सकते हैं। ध्यान रहे, शर्तें लागू हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel. Auto protected.
7: List up. Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 28th October live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School. List up. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, like a radio.
8: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
9: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
10: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
11: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
10: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
14: Leica Radio.
10: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
0: और डीजे साहब संगीत के क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको लेकिन इस गीत की फरमाइश आई है बैक टू बैक दो गीत आप सुनेंगे पहला गीत जिनकी फरमाइश पर आया है भाई उनके नाम है मेरे पास कहाँ है यहीं कहीं थे चलो पहले गीत सुनिए और गीत के बाद
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोक नूडल्स
15: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे
0: आंगन में मेरे सवेरे सवेरे क्या हुआ यही पूछा है भारती हविशा कांता, निर्मा एंड सारा पटेल ने। अब भाई ये इतने सारे लोग एक साथ, पूरी की पूरी गैंग कहाँ मिल गई भाई फरमाइश करने के लिए। कहते उस शो में जिसमें गा रहे थे, धूम मचा रहे थे, रंग जमा रहे थे भाई हमारे मित्र जर्मनी से गायक कलाकार जो है फाहद। फाहद भाई इतने सुरीले कलाकार हैं, उन्होंने बहुत लोगों को खींचा, थिएटर भरा हुआ था और उनकी आवाज का मजा ले रहे थे। ऐसे में शर्मा जी भी फंस गए भाई, इतने लोग मिले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार मिला भाई। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच, और वो सभी लोग जिन्होंने ग्रीटिंग्स दिए लाइका के प्रेजेंटर्स के नाम, आपके नाम है ये गीत।

और बंजारे के साथ बंजारन मनीषा शर्मा भी आ जाएं, वो भी गाएं और भाई संगीत में साथ निभा रहे हो जाने माने कलाकार पटेल साहब, नौशाद साहब, क्या कहने हैं?

0: जा
1: अपने घर जा, जिस घर में जन्मी खेली कूदी बड़ी हुई पढ़ी लिखी, वो घर अपना घर नहीं है।
2: भाई का घर
1: वो भाई का घर है, पिता का घर है, अपना घर तो वो है जो पति का घर है। भाई बहुत प्यारा गीत, इमोशनल गीत, यशुदास पामिला चोपड़ा और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत हमने सुनवाया आपको। पलिया कि थे ते चलिया कि थे, इमोशनल गीत। राखी का त्योहार था, राखी पर आई होंगी बहुत सारी बहनें भाई के घर, लेकिन भाई फिर कहते अब जा अपने घर, घर तो वही है तेरा,
3: तू अपने घर जा।
4: This is Leica Radio across the Midlands.
1: और भाई आपको बता दें कि एक हाँ दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आएंगे और अगले 3 घंटे वो आपके साथ बिताएंगे मीठी मीठी यादों के साथ, फिल्मी बातों।
4: This is Leica Radio. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: और ये गीत आपके नाम आनंद पटेल जी, आप किसी को भी गायक बना सकते हैं।
6: शर्मा के न जा

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जाने मन जाना ने मन भाई, व्हाट ए सॉन्ग दिस वाज. और शहनाई फिल्म का गीत था ये, रवि का संगीत था और एक्टर कौन थे भाई, मेरा ख्याल विश्वजीत थे उसमें. अब पुरानी फिल्मों के बारे में बहुत अच्छी पुख्ता जानकारी तो बाली भाई के पास होती है, लेकिन विश्वजीत और राजश्री थी, वे शांताराम की बेटी. तो भाई उस जमाने में बोलबाला था इन कलाकारों का, इन एक्टर एक्ट्रेसेस का. अब एक सूचना है हमारे पास आप तक पहुंचाने की.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
2: लाइका एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का 32 वो आ गया है, जरूर देखिएगा. इसमें भाई एक कलाकार से मेरी मुलाकात हुई और वो बातचीत हमारी संगीत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देगी. भाई मोहम्मद वकील एक गायक कलाकार हैं, सुरीले और संगीत के काफ़ी समझ है, परख है उन्हें. और हमने बहुत सारी बातें की और आपको लगेगा कि भाई वो बातें हर संगीत प्रेमी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है. इन द स्पेशल एपिसोड I sat down मैं बैठा उनके पास कैमरे के सामने और सवाल निकलते गए और जवाब मिलते गए. मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी, जरूर सुनिएगा. आप ये तो जानते ही हैं कि लाइका एक्स्ट्रा के पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल हैं Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे एपिसोड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जरूर देखिएगा.
0: Lyca Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Lyca Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Lyca Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to lycaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@lycaradio.com, or you can advertise on the Lyca Radio Network by emailing sales@lycamedia.co.uk. Lyca Radio.
4: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Lyca Radio Network.
6: Banana function rakha hua hai.
7: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी जी सिर्फ 10.99.
8: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
9: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग.
10: आई नो, आई कांट वेट टू सी एवरीवन. द होल फैमिली विल बी देयर.
11: फ्लाइट्स बुक्ड, आउटफिट्स पैक्ड, बट व्हाट अबाउट आवर फोन्स? वी नीड देम फॉर डायरेक्शंस, व्हाट्सएप, फोटोज एंड कीपिंग एवरीवन अपडेटेड.
10: दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिमजी. डेटा इन 220 प्लस डेस्टिनेशन विद 4G एंड 5G वेयर अवेलेबल.
11: एंड वी कीप आवर नंबर फॉर व्हाट्सएप एंड बैंक OTPs.
10: एग्जैक्टली. फ्लैट रेट, नो बिल शॉक. And ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Lyca Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
13: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions, and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
16: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
17: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
14: From Dudley to Handworth Wood, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. It's summer on the Leica Radio Network.
18: Mubarak ho sabko samaye suhana.

ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है तो किसी से जुदाई। आंसुओं को पढ़ के देखिए, दर्द है, खुशी के आंसू नहीं है।

ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। और भाई खबरों में चर्चा है पानी का, कोई खर्चा नहीं है पानी का, पर फिर भी क्या कहें साहब। नेपाल की जो समाचार आ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। पानी के भी कई रूप हैं, पानी जिंदगी है और कहीं कहीं पानी मौत। पानी का रंग पहचानिए, कौन से रंग का है ये पानी, सुख का, दुख का, छांव का, धूप का। जब ये फिरता है ना किसी चीज पर, पानी फिर दिया,

जब ये फिरे उम्मीदों पर तो इसका रंग समझ ना आए, और जब ये मेहरबान हो तो खेती लहलहाए। आंख का पानी मर जाए तो कहते हैं कि शर्म हया सब खत्म हो जाए। पानी रे पानी रे।

0: बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए भाई हमने ये गीत आपको परोसे और अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस आए हमारे चिंतन की और गीतों के बारे में लोग लिख रहे हैं। ज्योति और गिरीश शाह लिखते हैं भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है पर आपका पिछले घंटे में मैसेज आया था। गिरीश ईलिंग से कहते हैं बेटियां त्रिशंकु जैसी होती हैं, यानी बीच में झूलती हुई, उधर मायका बोलता है कि तू पराया धन है और ससुराल वाले कहते हैं कि ये तेरे पति का घर है तू मायके से नहीं लेके आई है। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। विजय सटन से लिखते हैं कि थैंक यू वेरी मच, अनदर वन क्या, एक गीत अच्छा लगा आपको, थैंक यू, और भी आएंगे। सलाव से रानी का संदेश है, उल्लास टोरंटो में हमें भाई वहां से मैसेज भेजते हैं और सत्यनारायण सैनी भारत में सुनते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे साथ। मृदु वीरेंद्र चौधरी जी, आपको क्या पसंद आया भाई, आपका अप्रिसिएशन तो मिल गया पर किस बात के लिए, तालियां वालियां भेजी हैं आपने, थैंक यू वेरी मच। और बुशी से जगदीश, अर्जुन और भाई महेंद्र बजारिया है रोसेन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी भारत से हैं, कौन है आओ, आप हैं समझ गए आप वही, थैंक यू वेरी मच। और उपाध्याय जी, संजय उपाध्याय, सो नाइस ऑफ यू भाई, जब हम कभी बाहर जाते हैं ना तो वैसे तो बहुत कम जाना होता है, हम तो घर से स्टूडियो तक के सफर में जो है काफी थक जाते हैं क्योंकि करीब 2 घंटे का सफर होता है, लेकिन जब कभी बाहर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इतने प्यारे प्यारे और न्यारे न्यारे लोग मिलते हैं, उन्हीं में से हमारे संजय जी भी एक हैं। और इसी बीच भाई इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी और कथा यूके की ओर से इंटरनेशनल सिद्धाश्रम में एक हिंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है भारत में और भारतवंशी जहां भी होते हैं वहां उसे मनाते हैं, तो हिंदी के कवियों से, हिंदी के लेखकों से मुलाकात हुई और एक साहित्यिक गोष्ठी कहिएगा एक शाम जो है हिंदी के नाम से तेजेंद्र शर्मा ने आयोजित की और भाई हमारे कपूर साहब अशोक कपूर जी और हमारे देवेंद्र अरोड़ा जी, तो इनकी संस्था है इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी, उसके भी भाई तरफ, उसकी तरफ से भी बहुत सुंदर कविताओं का श्रवण और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था। और राज राजेश्वर गुरु जी जो इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर से हैं उनकी ओर से जो सुविधाएँ दी गई, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर दें माता। और अब फिर से पैसों की बात करें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And let me tell you the competitive rate. £1 के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 127.35 रुपीज, 127 रुपए और 35 पैसे का रेट चल रहा है। You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन, कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच, मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99, टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96, एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rand piece से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
4: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट, क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट, बी part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: The wait is finally over.
6: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
5: Mirzapur is coming to the big screen.
7: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
5: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
8: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
5: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
7: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
9: નમસ્કાર, માર્ચ 2027માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4,499 pounds પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
10: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just 5 pounds. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Laika Radio.
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
13: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the Coast Guard, help!
14: Okay, help's on its way.
15: Grab my hand!
13: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
18: Hey, boy!
19: Coast Guard, we're stuck.
14: Okay, help's on its way.
20: Hold on, mate.
21: Shoes, tied, phone.
22: Back before dark, love. Okay.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
23: LemFi means quicker and safe way to send money.
24: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
23: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LAIKA.
24: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
25: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
26: Laika Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGoon.com.
27: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: And let me tell you, the Artist of the Week this week is Saptah ki Kalakar hai. सुरीले गायक कलाकार भाई, खासकर अगर कोई शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई गीत किसी के होठों पर सजाना हो तो फिर मन्ना डे जी को बुलाना हो. मन्ना डे.
28: ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया.

तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटरगूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

क्लासिकल धुनों पर तो भाई इनकी आवाज सजती ही रही है मन्ना डे साहब की, लेकिन महमूद के लिए कॉमेडी सॉन्ग भी अगर उन्होंने गाए तो भाई महमूद के होठों पर वो गीत जमकर बहुत छाए।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आज वही जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं उन्हें भी बधाई देते चलें। यहाँ ब्रिटिश राजनीति में एक नाम है आलोक शर्मा का। भाई रेडिंग से ये पूर्व मंत्री भी हैं और टोरी पार्टी के एक बड़े सम्मानित सदस्य हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। 1967 में जन्मे थे ये। इनके अलावा साहब जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम शामिल है भारत के एक राजनीति के पॉलिटिशियन का, और वो है राजस्थान से। राजस्थान से उनका डेप्यूटी सीएम रहे हैं या अब भी हैं मालूम नहीं, लेकिन बहुत चर्चित नाम रहे हैं। लेकिन एक और नाम याद आ रहा है, नीरजा भनोट। भूले तो नहीं होंगे आप उस लड़की के बलिदान को। भाई वो एयर होस्टेस थी और अमेरिकन एयरलाइन के एक हवाई जहाज को जब अगवा किया गया और उसे कराची ले जाया गया, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ जूझते हुए उनसे यात्रियों को बचाते हुए और उस लड़की ने अपनी जान दी थी। उन्हें भारत ने भी भाई उन्हें सम्मानित किया, अमेरिका ने भी और पाकिस्तान ने भी। उसका बलिदान जो है तीनों देशों ने स्वीकार किया। और साहब जन्मदिन कौन मना रहे हैं? सचिन पायलट। हाँ, वो राजस्थान के जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सचिन पायलट हैं वो जिनका आज जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। और भाई आपके घर में परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। स्टूडियो में जैसा मैंने बताया कि बहुत ठंड होती है हमारे यहाँ, दिल करता है कि रजाई लेके आया करें। स्टूडियो पूछता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर प्रोग्राम से पहले स्टूडियो खुद तुमसे पूछे कि बता तेरी रजाई कहाँ है।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई एक दो सूचनाएं हमारे पास हैं आप तक पहुंचाने के लिए, और उनमें एक तो ये है कि कई प्रोग्राम लाइन अप हैं और आप कहीं जाना चाहेंगे तो एक तो भाई बिग बॉस इज बैक, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे 6th of September, यानी जो कल गुजर गया, कल से शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम, तो साहब देखना मत भूलिएगा. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. तो साहब ये सूचना आप तक पहुंचानी थी. एक और कार्यक्रम की याद दिलानी है, याद दिलाना चाहता हूं, और वो कार्यक्रम कहां है, कब है भाई? उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, और यकीन नहीं आता ये तशरीफ ला रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 30वीं बरसी के अवसर पर. सिर्फ एक दिन के लिए एक शो लेकर आ रहे हैं संडे 18th April 2027 को, अगले साल, एट O2 लंदन, रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो ऑफ कोर्स. और मैं जिस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को गए हुए 30 बरस हो गए, ऐसा लगता जैसे कल की बात है, क्योंकि बारबीकन में उन्हें सोने के मुकुट से भाई सम्मानित किया गया था. उस प्रोग्राम में भी मैं मौजूद था, उनका एक प्रोग्राम मैंने कॉम्पेयर भी किया था वेम्बली में, और उसे देखने के लिए नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला और कई जो है फिल्मी हस्तियां मौजूद थी ऑडियंस में, मैं स्टेज पे था उनके साथ. और वो दिन, और उसके बाद एक फिल्म में भी हमने बैठ करके एक शो देखा, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की साथ घूमते फिरते. उस वक्त ये एहसास नहीं हो रहा था कि नहीं तो तस्वीरें बना लेते भाई, ऐसी महान हस्ती म्यूजिक के तो ऐसे पारंगत, क्यों कहिए कि भाई वो उनकी आवाज कुछ ऐसी थी ना जैसे वो क्या है कि अमेरिकन सिंगर हैं उन जैसी आवाज में वो गाते थे. क्या नाम उनका दिमाग से उतर रहा है, आपको याद है ना? तो सोच लीजिए, पर उसे मान लीजिएगा.
0: ये है लाइका रेडियो.
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर रहे उस दौर की, और हर दौर की हम कहेंगे एक ऐसी गायक कलाकार जोड़ी जिसने कितने ही अमर और मधुर गीत फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम संगीत प्रेमियों को दिए. सुन सुन के हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय कीजिए. ज्वेल थीफ फिल्म का गीत है, 1967 की फिल्म. उन दिनों बड़ी बड़ी बैनर्स वाली फिल्में जो है भाई वो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन ये फिल्म देवानंद और वैजयंतीमाला की फिल्म हिट थी, और हिट था संगीत भी.

चलो नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, पर थोड़ी देर बाद तो जाना होगा भाई, क्योंकि बाली ब्रह्म भट्ट को स्टूडियो में आना होगा। अब एक और संदेश हमारे पास है। साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। जाने माने भाई, पहचाने हुए साउथ ऑल ट्रेवल याद दिला रहे हैं कि अगर दुबई के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो भाई हमसे मिलिए। कहते हैं कॉन्टेक्ट साउथ ऑल ट्रेवल टुडे ऑन 0208574 8410। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Dates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Yee-hey.
0: Leica Radio. 4 stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends, featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: Basmati Rice.
1: Disha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
5: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
6: Cutthroat Ke Khiladi.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: From Helsowen to Harborne, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
9: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
10: Tasty track, bhai swadisht track geet hai. Swad kaun sa hota? Meetha hota. चक्के देखा क्या? अरे भाई सुनने में अच्छा होता। बस ये गीत सुनिए, इस गीत के माध्यम से वार्निंग देता हूं, चलने का समय हो गया है, हिम्मत हो तो रोक के दिखाऊं।

0: कौन किसी को रोक सका है। सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा पंछी एक दिन सबके सामने उड़ जाना है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. भाई LemFi वाले एक पाउंड के बदले इस समय दे रहे हैं इंडियन करेंसी में 128 रुपीज एग्जैक्टली, और पाकिस्तानी 375.7, बांग्लादेशी टका 166.43, श्रीलंकन रुपए 444.19, अफगानी 88.32 एंड श्रीलंकन तो बता दी ना, केनियन शिलिंग्स 175.18.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Radio.
3: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 104.26 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116

0: mode surplus, abhe stop-loss.
1: From Dudley to Aston, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और मनोरंजन के समापन का समय हो गया है। बहनों भाइयों, आपसे इजाजत लेते हुए एक दरखास्त करूं कि शेर लिखते रहो, गीत गाते रहो, जख्म दिल मत गिनो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी भले टूटा हुआ साज है, इस पे उल्फत के नगमे सजाते रहो। बाली भाई का इंतजार कीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। बाय बाय।

0: ओ मैन क्या गाने मजा आ जाता है। कभी कभी कुछ गाने बड़े अरसे से नहीं सुने होते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस हैना एंड वी गॉट हमारे दिनेश पोपट जी एंड मनु भाई एंड योगेश हंसावोरा वी गॉट मिकी पाजी एंड मिसिस चियांग थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज नाइस टू सी ऑन मंडे मॉर्निंग्स एंड यू गेट रिड ऑफ माय मंडे ब्लूज एंड नाजिया शकील एंड अर्जुन जी एंड अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल एंड वी गॉट विजय गडोरी यस आई वंडर व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिज golfing today and Pammy Singhji thank you very much as always first in with your messages thank you very much all of you these are the early birds who come in and then the others join in after lunch anyway aap sunte rahiyega main aage jo gaane sunane wala hu that's songs of Bappi Soni Bappi Soni was born on 31st of July 1928 And he passed away on 5th of September 2001 in Nanavati Hospital at the age of 73. इन्होंने सिर्फ 19 फिल्में की थी, लेकिन धमाका मचा दिया। अब गाने सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दो गाने जो थे वो उनकी फिल्मों के नहीं थे। But he was best known for शम्मी कपूर and धर्मेंद्रा hit films, and he won an award for ब्रह्मचारी. He was a producer, he was a director, and he was a writer. जिन्होंने 15 फिल्में की थी उसमें से काफ़ी प्रोड्यूस भी की थी इन्होंने फिल्में जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स अगर दूँ आपको ही प्रोड्यूस्ड तुम हसी मैं जवां जो डायरेक्ट भी की थी प्रीतम ऑल्सो डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड झील के उस पार डायरेक्ट की थी एंड प्रोड्यूस भी की थी चलता पुर्जा डायरेक्ट भी की थी प्रोड्यूस भी की थी बड़े दिल वाला डिड यू नो बड़े दिल वाला द फिल्म वॉज अ रीमेक ऑफ कटी पतंग उसमें जॉनर चेंज हो गया कैसे जेंडर चेंज कैसे हो गया एंड जॉनर भी चेंज हुआ था नो डाउट अबाउट इट 1971 की कटी पतंग फिल्म जो थी उसमें जो जेंडर मेल था वो फीमेल कर दिया इन बड़े दिल वाला एंड जो फीमेल था वो मेल कर दिया दैट वॉज द ऑपोजिट स्टोरी टू कटी पतंग लेकिन इट वॉज अ रीमेक ऑफ कटी पतंग यू कैन से एंड सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड द फिल्म वी आर टॉकिंग अबाउट बप्पी सोनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड राइटर एंड खून का कर्ज एंड निश्चय फिल्म इन्होंने फिल्में चार फिल्में लिखी थी 16 साल that was directed by Raj Khosla, जिसमें देवानंद थे वहीदा रहमान थी then Kala Pani, which was produced by Devanand himself, by Navketan Films, you know that. 1960 में इन्होंने फिल्म डायरेक्ट भी की थी और कहानी भी लिखी एक फूल चार कांटे was his debut film for direction. जी हाँ And then, of course, he directed Brahmachari. He didn't produce it, but he wrote the story of Brahmachari and also got an award for the best film. And he also directed that one. So, ek film thi, which was unfinished. Itni beautiful film thi, Kismat Ki Bazi, 1980 ki. Lekin, wo sab kahani mein sunane baith jaunga to pura din. निकल जाएगा यू नो व्हाट आई मीन ही स्टार्टेड बाय असिस्टिंग राज खोसला इन फिल्म मिलाप 1955 की 16 साल जिसकी कहानी उन्होंने लिखी थी लेकिन इन्होंने असिस्ट किया था राज खोसला जी को और सीआईडी फिल्म में असिस्ट किया था राज खोसला जी को 1956 राज खोसला ऑफ कोर्स द साधना ट्रिलॉजी वो कौन थी और ये सब फिल्म याद है यस अनीता We did it a few days ago. okay, let's carry on with it. And directorial debut of Bappi Soni. That was, I think it was in 1960. That's right. Ek Phool Char Kante. Ab gaane sunenge unke aur unko yaad karenge. And total 19 films. And he passed away in 2001, which is his 25th death anniversary yesterday. The day before yesterday.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
10: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
11: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.

0: of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या?
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: Each currency equivalent to one sterling pound. We got US dollars 1.3537, Indian rupees 128.02, Afghan Afghanis 88.59, Pakistani rupees 375.78, Kenyan shillings 175.18, and Mauritian rupees 63.47.
5: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
4: Gold is currently trading at £104.38 per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
6: Leica Radio.
7: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
4: एंड दिस सॉन्ग स्पेशली फॉर क्रुणाल. क्रुणाल हैड बीन अनवेल फॉर लास्ट वीक एंड ही इज बैक टू वर्क. वेलकम बैक. क्या नजारे, क्या इशारे,
8: क्या नजारे.
4: झील के उस पार किशोरदा.
8: क्या सितारे.
4: आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की लिरिक्स एंड ऑफ कोर्स फिल्म्स ऑफ बप्पी सोनी.

0: झील के उस पार। ये फिल्म प्रोड्यूस भी की थी बप्पी सोनी ने और डायरेक्ट भी की थी, 1973 की फिल्म। बट आई एम डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू क्रुणाल। इट वॉज सो वंडरफुल टू मीट द फैमिली क्रुणाल, रोशनी एंड समर्थ एट कशुम्बो। इट वॉज सो मच फन। यस, एंड इट्स ग्लैड टू सी हिम बैक टू वर्क एंड इन एक्शन, बिकॉज देयर इज सो मच वर्क हैपनिंग। एंड यू नो व्हाट आई मीन, द गजल स्टेशन दैट्स कमिंग सून।
1: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons, from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
5: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर। टिकट्स जस्ट £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, like a radio.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
12: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
11: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
12: Also explore 2026 cruises
11: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162-167-225. We're at Atal.
13: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group. New hits on Leica Radio.

0: And whenever I play this song, it's always dedicated to Farida Ghulam Ali, and she is crazy about this song. Not only this song, many of the Sri Ramchandra songs. Now, why am I playing these particular songs? Because we are remembering a great personality in the film industry, that is Pyare Lal Srivastav. Pyare Lal Srivastav? तो फिर पीएल संतोषी कौन है? इन्होंने अपना नाम एक्चुअली जब बॉम्बे आए थे तभी प्यारे लाल संतोषी ने अपना नाम नेचुरली पीएल संतोषी कर दिया था, बट ही वॉज बोर्न विद अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर, एंड इट्स प्यारे लाल श्रीवास्तव. प्यारे लाल श्रीवास्तव ने अपना नाम जब बॉम्बे आए थे तब शॉर्ट फॉर्म करके प्यारे लाल संतोषी कर दिया था. एनीवे, लेट्स गेट ऑन विद द डिटेल्स. पीएल संतोषी वाज नोन एज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सम पीपल से आई डोंट थिंक सो, बट आई विल टेल यू, ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स, ही वाज आल्सो अ स्क्रीन राइटर ऑफ फिल्म्स, ही वाज अ लिरिसिस्ट. इतने सारे गाने इन्होंने लिखे. आपने ये दो जो गाने अभी सुने, यू नो हम पंछी एक डाल के, और ये गाना जो आपने सुना आना मेरी जान संडे के संडे, ये पीएल संतोषी ने लिखे थे. हम हमेशा ये सोचते हैं कि एन दत्ता ने वो म्यूजिक दिया था हम पंछी एक डाल के, और सी रामचंद्र ने म्यूजिक दिया था और गाया भी था उस गाने के अंदर आना मेरी जान संडे, लेकिन गाने लिखे थे पीएल संतोषी ने. यस, ही वाज नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अ स्टोरी राइटर, दैट मींस ही वाज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड जिसको हम कहते हैं हरफन मौला. हरफन मौला कौन थे हमारी इंडस्ट्री के अंदर? It was to start with, you can say Kidar Sharma, you can say Prem Dhawan, फिर थे Raj Kapoor ji, Vijay Anand, multi-talented these guys. They would sing, they would act, they would direct, they would produce, they would edit, they would do screenplays, screenwriting. एंड सबसे बड़े हरफन मौला हमारी इंडस्ट्री के किशोर कुमार, जिन्होंने म्यूजिक भी, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, गाने भी लिखे, गाने गाए भी, प्रोड्यूस भी की फिल्में और डायरेक्ट भी की फिल्में. इनको कहते हैं हम हरफन मौला, एंड सो इज पीएल संतोषी. डोंट फॉरगेट, ही वोर मल्टीपल हैट्स, एंड कभी डायरेक्टर की हैट पहन के फिल्म डायरेक्ट की, फिर उसके बाद लिरिसिस्ट की हैट पहन के इन्होंने लिरिक्स लिखी फिल्म की, कभी स्टोरी राइटर की हैट पहन के फिल्म की स्टोरी लिख ली. अब मैं आगे क्या बताऊं आपको, इट कुड बी डिवोशनल गाने हो या फिल्म हो या ट्रिवियल या ह्यूमरस हो या रोमांटिक हो, फिलोसॉफिकल हो, पैथोस के साथ भरी हुई फिल्में हो. He used meaningless words in his lyrics sometimes, you know, जैसे कि he, ha, and tarara, ऐसे ऐसे lyrics वो लिखते थे. लेकिन उस जमाने में teenagers के लिए एक craze बन गया, जैसे आना मेरी जान संडे के संडे, वो गाना craze हो गया, because he wrote the lyrics and they were so catchy. अब इनके बारे में आगे मैं बात कहूं तो बचपन में ही, he was born in जबलपुर. जबलपुर में पता कौन से एक नाम तो मेरे जहन में आता है, एंड दैट इज आदेश श्रीवास्तव, who was also born in जबलपुर. नाउ पीएल संतोष बोर्न प्यारे लाल श्रीवास्तव, हाईली वर्सेटाइल फिगर, इतना मैंने अभी तक आपको बताया. अभी इनकी करियर के बारे में हम बताते हैं. He was a man of many talents. बचपन से he used to go in कवि सम्मेलन and all that. एक बार एक गांव में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें उनको एक चांस मिला था. By the way, इनके पिताजी हेडमास्टर थे उस स्कूल के, एंड इनको चांस मिला असिस्टेंट डायलॉग राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म दैट केम टू जबलपुर फॉर शूटिंग, इनमें से इनको कीड़ा घुस गया कि मेरे को बॉम्बे जाके फिल्में करनी है. सो ही वेंट टू बॉम्बे इन द मिड 1930s एंड स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट टू जद्दन भाई. Jaddan Bhai kaun? Mother of actress Nargis, of course. And he quickly rose to prominence as a multi-talented filmmaker who wrote stories, screenplays, lyrics while directing his own movies. And he directed Hum Ek Hain 1946 mein. Hum Ek Hain, jab film inhone direct ki, to 1946 mein, which marked the on-screen debut of legendary actor Devanand. Devanand ki sabse pehli debut film Hum Ek Hain 1946 ki. Yes, he also wrote and directed film Shehnai 1947 ki, which released on 15th of August, the day India gained freedom, of course. अब आगे मैं बताऊं तो नोटेबल फिल्मोग्राफी इनकी देखो. संतोषी डायरेक्टेड, रोट एंड कंट्रीब्यूटेड टू डजन्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल हिंदी फिल्म्स. हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्टोरियल वेंचर्स आई वुड से, जैसे कि मैंने कहा हम एक हैं डायरेक्टर 1946 के, शहनाई 1946, खिड़की 1948 की. And then he directed a major box office hit starring Raj Kapoor, which was Sargam 1950 ki. 1952 mein Shin Shinaki Bublabu, and director and producer. It was a controversial musical. कुछ अच्छे फिल्में भी थी, कुछ बुरी फिल्में भी थी, लेकिन हम अच्छी फिल्मों की बात कर रहे हैं. सबसे बड़ा रुपया सटायरिकल कॉमेडी अबाउट द पावर ऑफ मनी एंड हम पंछी एक डाल के, फिर बरसात की रात, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर, अ मासिव ब्लॉकबस्टर स्टारिंग मधुबाला 1963 में, दिल ही तो है डायरेक्टर एंड पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा स्टारिंग राज कपूर एंड नूतन, एंड 1963 में ओपेरा हाउस, ऐसी ऐसी फिल्मों में. और फेमस गाने इन्होंने जो लिखे, यूज टू राइट नॉनसेंस एंड जिबरिश लिरिक स्टाइल. एंड ये थी आना मेरी जान संडे, ओ नींद ना मुझको आए, ओ मैं आपको सुनाता हूँ, सुनते जाइएगा. वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन द मल्टी टैलेंटेड पीएल संतोषी. आज आपकी आंखें खुली ना कि नाम तो सुना था राजकुमार संतोषी के पिताजी है, लेकिन कितने टैलेंटेड थे. ही पास्ड अवे ऑन 7th of September 1978, हेंस इट इज हिज 48th डेथ एनिवर्सरी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the latest rates, which sometimes fluctuate. So the latest rate for one British sterling pound is you can get up to 127.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू. और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ $10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
5: जिंदगी बर्बाद हो गया.
3: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AX.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट $8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली $16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट $29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे grand.
7: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: Lesterna Little Garba Stars, Tayar Thai Jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 Varashna Kids Mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fan. Radio partner, Leica Radio.
9: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: फिल्म है सरगम 1950 की, वी आर रिमेम्बरिंग पीएल संतोषी, और इस गाने में तीन राग हैं, आसावरी, इट्स देवगंधार एंड जौनपुरी. व्हाट लवली म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय पीएल संतोषी. मैंने कहा था ना, दम है बात में, मजा आया ना. सी रामचंद्र का संगीत है और पीएल संतोष की लिरिक्स.
1: ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट ऐड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स.
0: I hope you're enjoying the tribute and the films that P.L. Santoshi are in ke saath jo filme judi hui hain, jaise ke Shehnai and then Sargam and Hum Panchi Ek Dal Ke, Barsaat Ki Raat, Opera House, Dil Hi To Hai. To main koshish karunga ke ek do gaane squeeze in kar dun aapke liye. Suniyega.
2: On this week's Like Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
3: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे. और जिसने अपने गुरु के माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक. बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है.
2: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3537, Indian rupees 127.99, Afghanis 88.56, Pakistani rupees 375.74, Kenyan shillings 175.23, and Mauritian rupees 63.47.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £104.59 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
2: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB. This is Leica Radio across the Midlands. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
5: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
6: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network. It's back and it's bigger.
11: Laika Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
12: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
11: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
12: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
14: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग.
15: आई नो, आई कांट वेट टू see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
16: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
17: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
18: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
17: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
16: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.
19: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
20: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
19: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
20: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
21: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
16: App. Listen live and listen back to your favorite shows. This is Leica Radio across the Midlands.

फिल्म है बरसात की रात। पीएल संतोषी ने डायरेक्ट की, स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा टुगेदर विद भरत भूषण एंड सरशार शैलानी हु डिड द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय आर चंद्रा और रफी अजमेरी ने स्टोरी लिखी थी, लेकिन ये डायरेक्शन वॉज सुपर्ब। रोशन का संगीत था, सोनिक का बैकग्राउंड म्यूजिक था और गाने तो वो सुनिएगा पूरी कवाली आज।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757. To arrange your meeting.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड

0: सवेरे वाली गाड़ी 1986 सुरेश वाडकर और आशा भोसले, लेकिन मैं तो अभी शाम वाली गाड़ी में चला जाऊंगा बिफोर इट स्टार्ट्स पेल्टिंग डाउन विद रेन. That is going to be Sandy Shah, who's going to join you, and Raj Patan on Laika Radio Midlands. Bali ka namaskar.
1: It's here. Laika Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.
0: Ek nazar, patta patta, boota boota.
2: Patta patta, boota.
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स. रफी साहब,

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
3: Cutthroat Ke Khiladi.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: Ye hai Leica Go.

0: हाय हाय, इसमें एक तरफ से कह रहे हैं कि नखरे लड़की के ज्यादा होते हैं और एक तरफ से कह रहे हैं कि नखरे लड़के के ज्यादा हो रहे हैं। अभी आप ही बताओ, ज्यादा नखरे कौन करता है, लड़का या लड़की? राय बताइए, हम अनोनिमस रखेंगे। फॉर नाउ दैट फील गुड ट्रैक ऑफ द आवर।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Now, this is a special request that has come in from Nandika, but she has to go to bedtime because she's got school in the morning.

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार ये ऐसी एक बीमारी है जिसका किसी पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चॉइस भी नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेवेरिया वाली बीमारियां कहते बहुत अच्छी वाली भी है, लेकिन कम्स विद इट्स पॉइंट्स ऑफ ट्रबल। Let me know your thoughts. I'm far too young and innocent to know about this Laveria Valley Bimari. Time now though for a good check of the hour. Big shouts going out to
1: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Big shouts going out to Mimi for this epic choice.

0: Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's time for you to take over the airwaves with Radio Wally.
2: Like a radio.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
4: I happen to happy Wally, feeling like a Diwali.
1: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
1: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
1: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: दुबई इज एन opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
9: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

0: Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
6: Hey, boy!
7: Coast Guard, we're stuck.
8: Okay, help's on its way.
7: Hold on, mate.
9: Shoes, tide, phone.
10: Back before dark, love. Okay.
11: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
0: From Dudley to Aston, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands, the sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Southall Travel, at all protected.
3: London, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and